उम्मीद है कि दोस्तों की पसंद आया तो साढ़े नाल से दोस्त मम्मी यसीन और सलामत कर रहे सब दोस्तों की पिज्जे भी बनाए रहे। ये हूँ नैक्सट स्पैशली दोस्त मम्मी यसीन साहब वास्तव सुनो पसंद है।

उम्मीद है कि दोस्तों की पसंद आया सी जरूर, स्पेशली साढ़े दोस्त यसीन साहब की। तो नेक्स्ट ये सुनो, ये सब मैं वास्ते फिर ब्रेक आई जैसी।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: Linking communities, thinking positive. This is Link FM.

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, Azir solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bellhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Azir solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: परेशान खलते हुए जी
6: अंकल, मेरी कार्ड की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
5: ये तो कोई फिक्र वाली गल है नहीं, ऐ साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने, भावे कार वे या वैन, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस।
6: ए ए एमओटी वाले है किधर?
7: ए ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटकलिफ S92PE। अपॉइंटमेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं, अच्छो एमओटी गड्डी निकलो ते मौजा करो। फोन नंबर 0786-786-2585.
8: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456-848-368. That's 07456-848-368. 368 or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
9: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
10: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
11: 96.7 Link FM.
0: You are listening to Link FM.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Shai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: कम्युनिटी की आवाज, ये है लिंक एफएम 96.7।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं नईम अज़हरवी और तुम सुन रहे हो लिंक एफएम।
2: Lizzie Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114-308-2727 or visit us online, lizziasolicitors.co.uk. Lizzie Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: खुश इखलाक अमला, लाजवाब सर्विस, AAMOT। अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी की MOT नहीं करवाई या आपकी गाड़ी की MOT एक्सपायर हो चुकी है, तो कहीं और जाने या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हर किस्म की गाड़ियों की MOT का काबिले एतमाद सेंटर, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री। AAMOT, क्ले स्ट्रीट, अटकलीफ, शेफील्ड, S9 to VE। गुलाम कादर साहब से अभी राब्ता करें। कॉन्टेक्ट नंबर 0786-786-2585।
6: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct, Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456-848-368. That's 07456-848-368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
7: $55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
8: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
1: 96.7 Link FM.
9: You're listening to Link FM.

वेलकम बैक, खुश आमदेद जिन्होंने अभी ज्वाइन किया। ये है क्वाली स्पेशल और मैं हूँ फैसल याकूब सुल्तानी। और क्योंकि वक्त था ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, स्टे ट्यून्ड। और ब्रेक के फौरन बाद अब चलते हैं हम अगले कलाम की तरफ।

के बाद आप तमाम को खुश आमदेद कहते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम है कवाली शो और मैं हूं फैसल याकूब सुल्तानी और खूबसूरत कवाली का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ कलाम आप सुन रहे हैं और अब चलते हैं अगले कलाम की तरफ।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जितने भी सुनने वाले हैं उनको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। जो ने अभी ज्वाइन किया उनको बताते चले कि ये प्रोग्राम है कवाली स्पेशल और आपका और मेरा साथ होता है रोज़, सोमवार को छोड़ के बाकी दिन हमारा और आपका साथ रहता है और इसमें हम आपके लिए मुख्तलिफ कवाली पेश करते हैं। और अब ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब चलते हैं अगले कलाम की तरफ।

0: Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।
0: Link FM, your number one community radio station.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेकअवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: Link FM, Sheffield.
16: Link FM.
17: Du'as from the Quran and Sunnah. Du'a for when you wake up.

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ, लिंक एफएम शेफील्ड।
1: मैं हूं अली अब्बास और आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7 एफएम।

0: Naim Hazarvi UK Tour 2020 Folk Music. Naim Hazarvi will be live on stage on Tuesday, 14th of July 2026 at Arid Suites, Sheffield S47WZ, alongside Farah Khan and Zara Akbar. For further details, please contact Joy Kramath on 077-54-132-576, and you can also book online at Eventbrite. Tickets start from £25. See you all at the Naim Hazarvi show.
1: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
2: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
3: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया, हाँ?
2: एक कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है, और भुगतना हमको पड़ता है।
3: तो भुगतो।

0: क्या आपको ये गीता कबूल है?
1: जी कबूल है।
2: जी कबूल है।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो मुबारक।
1: कैसे जाया जाएगा मुझसे? मैं छुट्टी लेके जल्दी वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करोगी?
2: जी।

चला एक ऐसी नज्म कहूं जो लफ्ज कहूं वो हो जाए, बस अश्क कहूं तो एक आंसू तेरे गोरे काल को धो जाए। मैं आ लिखूं तो आ जाए, मैं बैठ लिखूं तो आ बैठे, मेरे शाने पर सर रखे तू, मैं नींद कहूं तो सो जाए। मैं कागज पर तेरे होंठ लिखूं, तेरे होंठों पर मुस्कान आए, मैं दिल लिखूं तो दिल थामे, मैं गुम लिखूं वो खो जाए, तेरे हाथ बनाऊं पेंसिल से, फिर हाथ पे तेरे हाथ रखूं, कुछ उल्टा सीधा फर्ज करूं, कुछ सीधा उल्टा हो जाए, मैं आह भरूं तो हाय करे, बेचैन लिखूं बेचैन हो तू, फिर बेचैनी का बे काटूं, तुझे चैन जरा सा हो जाए, अभी ऐन लिखूं तू सोचे मुझे, फिर शीन लिखूं तेरी नींद उड़े, जब काफ लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए।

0: Sheffield's Link FM.
1: अस्सलाम वालेकुम जी, आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7। मैं हूं इफ्तिखार ठाकुर और आपके साथ सफ़र साथ साथ करता रहूंगा।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: तू सबको

0: सदा तू सबका है खुदा, तू सुन मेरी दुआ। ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा।
1: This is Ahmad Hussein and you're listening to

0: Kramatan 077-54-132-576, and you can also book online at Eventbrite. Ticket starts from £25. See you all at the Naim Hazarvi show.
1: जहाँ हर लफ्ज दिल से निकले
2: और हर सूर दिल को छो जाए,
3: वही है लिंक एफएम।
1: दिल से आपके साथ
3: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: सुनिए सुनिए सुनिए, पार्ल बेकर ने शेफील्ड में धूम मचा दी, यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सजा दी। गुलाब जामुन, लड्डू, रसमलाई, फलूदा, हलवा, पूरी,
2: समोसा, चाट, नमक पारे, जलेबी, गाजर हलवा, हर किस्म की केक और मिठाई जो सबको पसंद आई।
1: लजीज चिकन पेस्ट्री, लैम पेस्ट्री, सैंडविच, चिकन पनीनी, दही बल्ले और किबाब, सब कुछ ही लाजवाब। पार्ल बेकर, 640 Stanyford Road, शेफील्ड, S94LP, टेलीफोन 0114296092। पार्ल बेकर।
3: Getting married or know someone who is? Make your big day unforgettable with Diamond Wedding Services. From breathtaking floral decor to elegant stages, centerpieces and stunning walkways, we design every detail to perfection. However you imagine your dream wedding, our team can bring it to life. So relax, celebrate and let Diamond Wedding Services handle the magic. Call 077-680-47693 and follow us on Instagram and TikTok at Diamond Wedding Services. Your dream, beautifully designed.
4: You are listening to Link FM.
5: Sheffield's very own community radio station.
6: Link FM.
7: Linking communities. This is Link FM. 96.

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: सिर्फ तुम ही हो हमारे दिल की अमानत, जिंदगी है हमारी तुम्हारी मोहब्बत।

0: जहाँ दिल मिलते हैं, जहाँ बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल
1: जहाँ बातें बनते हैं, वही है लिंक एफएम। दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड।
3: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
2: Lazier Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, laziersolicitors.co.uk. Lazier Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے ایم او ٹی کلے سٹریٹ اٹکلیف شیفیلڈ ایس 92VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 0786-786-2585
6: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456 848 368. That's 07456 848 368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
7: $55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
8: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
9: 96.7 Link FM.
0: You are listening to Link FM.
10: Naeem Azharvi UK Tour 2020 Folk Music. Naeem Azharvi will be live on stage on Tuesday, 14th of July 2026 at Arid Suites, Sheffield S47WZ, alongside Farah Khan and Zara Akbar. For further details, please contact Joy Kramath on 077-54-132-576, and you can also book online at Eventbrite. Ticket starts from £25. See you all at the Naeem Azharvi Show.
11: जहाँ हर लफ्ज दिल से निकले
12: और हर सूर दिल को छो जाए,
13: वही है लिंक एफएम।
14: दिल से आपके साथ
13: लिंक एफएम शेफील्ड।
15: तुम्हारी ब्याह तो हो जाए, फिर तो सब कुछ मैं ही करना ना
16: जी।
15: मैं तेरे हाथ की मेहंदी ला करूंगा सोनी जी।
16: और
15: और मैं तेन साइकिल भी सिखाऊंगा। अपना करीब पिंग पावांगे ते फिर तू ओते झूठे लिया कर।
16: ये सब कुछ मैं ही तो कर रही हूँ। पिंग भी मैं झूठ रही हूँ, मेहंदी भी मैं लगा रही हूँ, साइकिल भी मैं चला रही हूँ। तू बस

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your

0: की मंजिल
1: जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ।
2: लिंक एफएम शेफील्ड।
3: लिंक एफएम, योर नंबर वन कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
1: मैं औरंगजेब चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
4: मेरा नाम शफाक हुसैन क्यानी है।
5: मेरा नाम अमदस करा।
6: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूं।
7: मेरा नाम अंजुम अफ्ताब है।
8: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusi sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Nazir Solicitors is trading style of Affinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: परेशान खलते हुए जी
6: अंकल, मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
5: ये तो कोई फिक्र वाली गल है नहीं, ऐ साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने, भावें कार वे या वैन, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस।
6: ए ए एमओटी वाले है किधर?
7: ए ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटरक्लिफ, S92PE। अपॉइंटमेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं, अच्छो एमओटी गड्डी निकरो ते मौजा करो। फोन नंबर 0786-786-2585.
8: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct, Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456-848-368. That's 07456-848-368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress-free.

0: can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.
1: अलग और मुनफरिद अंदाज रंगारंग प्रोग्रामों के साथ लिंक एफएम हर लम्हा हर जगह

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: You're listening to Sohana Safar with Ifat Hamid and Mohammed Yassin on Link FM. Every Sunday.

0: You are listening to Suhana Safar
1: with Iffat Hamid and Mohammed Yasin.
0: You are listening to
2: Assalamu alaikum. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इस खूबसूरत मौसम से भी लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे. खूबसूरत इसलिए कि ये मौसम भी साल के बाद हमें कभी देखने को मिलता है, गर्म मौसम. लेकिन वही बात है ना कि अगर गर्मी शिद्दत की हो तो कभी कभी वो भी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है. लेकिन उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस मौसम को भी आपने इंजॉय किया होगा. सामईन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं. सुहाना सफ़र में लिंक FM से ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं. हर इतवार की शाम को हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, शाम 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक.
3: समय ये दिल वालों की महफिल है, हमारा आप साथ दीजिएगा. जैसा कि इफ़्त जी ने कहा है कि 7 to 9 एवरी संडे को हमारा और आपका साथ रहता है. साथ इसलिए रहता है कि हम आपसे मोहब्बत रखते हैं और आप भी हमसे मोहब्बत रखते हैं. पिछले तक जो प्रोग्राम वहाँ PMC में हुआ है उसके हवाले से थोड़ा सा इफ़्त जी सामने को बता देते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा. यानी 10 साल 10th year जी,
2: 10th anniversary थी लिंक FM की. और माशाल्लाह आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो तब से लिंक FM को सुन रहे हैं, साथ निभा रहे हैं. और तमाम प्रेजेंटर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया और मैनेजमेंट का तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं. प्रोग्राम अच्छा था, सबको उन्होंने बहुत सराहा. जिन लोगों ने प्रोग्राम प्रेजेंट किए उन सबको सर्टिफिकेट दिए गए और उनकी जितनी भी खिदमात थी उनको बहुत अच्छे तरीके से सराहा गया. तो सामईन, प्रोग्राम आप हमारा सुन रहे हैं. सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत चाहूँगी, मैं और यासीन दोनों, कि पिछले 2-3 हफ्तों से हम जो है ये प्रोग्राम नहीं पेश कर सके क्योंकि मेरी अपनी जो है ये कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थी. अपनी जो है ना काम के हवाले से मैं बहुत बिज़ी थी क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और आपको पता है टीचर्स की कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एग्ज़ाम्स के बाद. तो इसलिए जो है मैं प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सकी. और इसी तरह यासीन भी अपनी जगह बहुत मसरूफ़ थे. तो आज हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में एक अच्छा सा प्रोग्राम लेके और हमेशा की तरह. और बहुत आपने पिछले जो मुझे कुछ एक तो फंक्शंस जो है ना कम्युनिटी के मुझे अटेंड करने का इत्तेफाक हुआ और बहुत से लोगों ने मुझे यासीन पूछा कि आपका प्रोग्राम नहीं आजकल जो है ना आप मतलब वो जो है वो शायद रिपीट के प्रोग्राम थे, लाइव आप नहीं कर रहे. और बहुत प्रोग्राम को सराहा है और मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर के वाकई आप जो है ना ये प्रोग्राम बहुत शौक से सुनते हैं. और हर एक का यही कहना था कि बस यही है कि हम BBC को सुन रहे हैं दोबारा.
3: कुछ लोग इफ़्त जी मिलते भी हैं और कहते हैं कि भाई आपकी आवाज़ सुनी थी कि आप वहाँ प्रोग्राम करते हैं.
2: जी जी बिल्कुल ऐसा ही है. तो बहरहाल सामईन, आप ही का प्रोग्राम है, यहाँ पर हो BBC में हो, हम आपके हैं आप हमारे हैं, ठीक है. और इसी तरह ये प्रोग्राम जो है ये चलता रहेगा और आप हमारा साथ निभाते रहेंगे. हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम में अच्छी अच्छी बातें आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी. सामईन, प्रोग्राम में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं, मेन कुछ कहना चाहते हैं, तो आप स्टूडियोज़ का नंबर है 0114-261-8181 पर आप हमें स्टूडियोज़ में कॉल कर सकते हैं. जब हम कोई सॉन्ग या गाना लगा हो ना सामईन, तो उस वक्त अगर आप फ़ोन करें तो फिर आपका फ़ोन जो है हम अटेंड कर लेंगे. अगर व्हाट्सएप पर आप मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो
3: मोस्ट वेलकम, खुला
2: जी हाँ बिल्कुल 0793984939 पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं.
3: जी, और जो पहला नगमा हमने सुनाया सामने आपको, मोहम्मद रफ़ी साहब यानी कि धर्मेंद्र साहब थे पर्दा स्क्रीन पर, कह रहे मौसम बड़ा बेईमान है
2: जी.
3: अब अहमद रुश्दी साहब कुछ और कह रहे हैं, कहते हैं मौसम बड़ा हसीन है.
2: यानी कि मौसम के हवाले से ही आप जो है आज हमारे सामईन को कुछ नगमात सुनवाएंगे. क्यों क्यों नहीं, मौसम जो है अच्छा है, खूबसूरत है. और इससे पहले कि आप नगमा सुनाएं यासीन, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है
3: जी.
2: मौसम तो इंसान के अंदर होता है.
3: हाँ सही
2: जी. तो लीजिए सुनिए एक और अच्छा सा नगमा अहमद रुश्दी की आवाज़ में आप सबके नाम.

0: तू दिल में आया, तू दिल में आया तो निकल गई हर शय दिल से, तेरी तलब ने जमाने से बेतलब रखा,
1: तेरी तलब ने जमाने से बेतलब रखा। बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या क्या कुछ, बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या क्या कुछ। मौसम इतना सर्द नहीं था जितनी आग जला ली हमने।
0: हाँ, बहुत खूब बहुत खूब। मुझे किसी से गरज नहीं, मुझे किसी से गरज नहीं, मुझे काम है अपने काम से, जैसे कि आजकल लोग करते हैं ना, अपने काम से काम, दूसरे किसी में जो कहते हैं नोस जो है ना उसमें नहीं डालते हैं।
1: बिल्कुल।
0: मुझे किसी से गरज नहीं, मुझे काम है अपने काम से, तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी याद से और तेरे नाम से।
1: 7 0 7 9 3 9 8 4 9 3 9 व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप हमें मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर भेजिए। स्टूडियोज़ का नंबर है 0114 2618181। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर आप मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर भेजिए। साथ निभाते रहिए।
0: जी हाँ सामिन, जैसा कि आपको इल्म है कि मोहम्मद रफ़ी साहब का जुलाई में इंतकाल, और दिलीप महान है ना, दिलीप कुमार साहब, उनका भी जुलाई में। तो मैंने ऐसा किया कि सोच रहा था कि भाई कुछ नगमे प्ले किए जाएं उनके, दिलीप कुमार के जो है ना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हैं, चंद फिल्मों के हैं मेरे पास, अच्छे अच्छे हैं, और वैसे तो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के हैं। ट्रिब्यूट दोनों को हम पेश करेंगे।
1: बिल्कुल यकीनन, जी हाँ।
0: तो एक और मैं तेरे इश्क में, यानी कि ये लता मंगेशकर कह रही है ना, किसको? ये दिरमिल साहब को। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न करना।

0: मुकेश की आवाज़ में खूबसूरत नगमा आप सुन रहे थे। सामिन, उम्मीद है कि आपने इस नगमे को पसंद किया होगा। सामिन, टेलीफोन लाइंस जो हैं हमारे स्टूडियोज़ की खुली हैं 0114-261-8181 पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और मोहसिन साहब, आपके टेलीफोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आप मोहसिन साहब सुन रहे हैं, आपने प्रोग्राम को पसंद किया, ना सिर्फ पसंद किया बल्कि हमें टेलीफोन भी किया और प्रोग्राम के बारे में अपनी राय दी। आपने जो नगमा आपने फरमाइश की है, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस नगमे को तलाश करें। अगर आज नहीं तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते ज़रूर आपकी खिदमत में आपका पसंदीदा नगमा हम पेश करेंगे। सामिन, ये टाइम है अब तकरीबन लास्ट वीक, अब होगा नेक्स्ट वीक, ठीक है, उसके बाद एंड ऑफ टर्म, जी हाँ, और फिर समर हॉलीडेज जो हैं वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। टाइम इतनी तेज़ी से गुजरता है कि दिन तो क्या सालों का पता नहीं चलता, और ये साल भी उसी तरह बहुत तेज़ी से गुजरा है। और हम, जैसा कि मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था, आज फिर मैं कह रही हूँ कि आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत जो है नेक तमन्नाएं हैं, बेस्ट विशेज़ हैं। आप सब ने जो एग्ज़ाम्स दिए हैं, जिन जिन बच्चों ने ए लेवल्स के, GCSEs के, यूनिवर्सिटीज़ के, आप सबको अल्लाह ताला कामयाब करे। और जो कुछ आप ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपकी वो सारी जो है ये विशेज़ आपकी पूरी करे।
1: और स्ट्रेस खत्म हो गई ना इन बच्चों?
0: हाँ जी, बट नहीं, हॉलीडेज हैं बस, उसमें हॉलीडेज हैं। फिर अब एग्ज़ाम के रिजल्ट की स्ट्रेस भी तो अपनी जगह है ना बच्चों की, ठीक है, कि अब जिन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है, जिन बच्चों ने, उनको है कि उनके जो ग्रेड्स जो उनको चाहिए वो अल्लाह करे कि वो ग्रेड्स आपको मिल जाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकें। और बाकी जो है ये बच्चे तो आपने मेहनत की है, लेकिन असातिज़ा को जो है हम नहीं भूल सकते कि आपकी जो बिल्कुल आप आज जहाँ पर हैं वो आपके असातिज़ा का क्रेडिट भी जाता है बहुत ज़्यादा उनको, कि उनकी मेहनत भी जो है वो अपनी जगह है, कि बगैर उस्ताद के तो आप कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए है कि असातिज़ा के नाम है कि जितनी भी ज़माने से मुझे दाद मिली है, जितनी भी ज़माने से मुझे दाद मिली है, मेरा ईमान है कि सब बाई से उस्ताद मिली है। बिल्कुल जी, आज मैं खुद मैं कहती हूँ कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वो मेरे उस्ताद का जो है ये मेरे ऊपर जो है ना वो एहसान है कि जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी तालीम दी कि आज मैं ज़िंदगी में जो कुछ अचीव करना चाहती थी मैंने किया। हमारी दरसगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। उस्ताद ही अच्छी कौम की बुनियाद है।
1: जब कोई भी आप बिल्डिंग खड़ी करना चाहें तो बुनियादें उसकी पक्की होनी, बुनियादें जो है ना वो मजबूत होनी चाहिए, तब बिल्डिंग जो
0: बिल्कुल, और वो जो आपकी बुनियाद है वो एक उस्ताद ही अच्छी बुनियाद आपकी डाल देता है,
1: जाहिर इसमें कोई शक नहीं। तो रुक से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, फिल्म देखी आपने?
0: जी मैंने, मेरा ख्याल है मेरे हुजूर जितेंद्र
1: जतेंद्र की फिल्म थी शायद, माला सिन्हा और राजकुमार का एक यादगार रोल था इसमें। तो समय एक फिल्म जो थी ना, ये ना कि एक नया सब्जेक्ट था इसका इंडिया। तो समय ये मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ में है, खासकर मोहसिन साहब आप पसंद करते हैं, कहते हैं कि मेलोडी नगमे, तो ये नगमों में खैर में बहुत ही मेलोडी होगा आपके लिए।

0: रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर जलवा।
1: वैसे इनको पता बताने की जरूरत नहीं है, पूछें जाओगे कहाँ मेरे हुजूर हैं जी?
2: जी
1: क्यों बताएं इन सबको हैं
2: जी,
1: अपने प्राइवेसी होती है नहीं जी?
2: सही है। सामिन मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जैसे कि यासीन ने मेंशन किया कि उनकी डेथ एनिवर्सरी है जुलाई में, मोहम्मद रफ़ी को भी हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और साथ साथ हम जो है ना दिलीप कुमार साहब को भी जो हैं हम जो लेजेंड हमारे जो हैं थे उनको भी हम ट्रिब्यूट इस प्रोग्राम में पेश कर रहे हैं। और आप अभी जो है ना याकूब साहब का जो है वो टेलीफोन कॉल हमें आई है
1: जी हाँ।
2: और याकूब साहब आप भी प्रोग्राम बहुत शौक से सुन रहे हैं, प्रोग्राम को सुनने का पसंद करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया याकूब साहब। आपका जो पसंद का जो नगमा है वो कोशिश करेंगे, ठीक है, अगर मिला तो, वरना
1: हाँ जी
2: आइंदा हफ्ते आपके लिए वो
1: कहते हैं कोशिश करें तो अल्लाह भी मिल जाता है।
2: बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। और शाहिदा आपके मैसेज भेजने का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने मोहम्मद रफ़ी की डेथ एनिवर्सरी पर उन्हीं का नगमा मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत इन्होंने सुना
1: और जहां की खाक मोहब्बत
2: जी
1: बस के चलना हुजूर कहीं प्यार ना
2: हो जाए।
1: हाँ विश्वजीत की फिल्म एप्टर फूल सारा बानो के साथ प्ले करेंगे थोड़ी देर के बाद
2: जी, तो आपकी रिक्वेस्ट शाहिदा हम थोड़ी देर में प्ले करेंगे। आपके भी मैसेज भेजने का बहुत बहुत शुक्रिया। सामिन अगर आप भी कुछ हमें कहना चाहते हैं तो 07939849339 पर आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं। बात हो रही थी कुछ असातिज़ा की और स्टूडेंट्स के हवाले से
1: जी जी,
2: तो उस्ताद ने बच्चे से कुछ ऐसे सवाल किया, उठा रखा है आपने उर्दू अदब का बेड़ा, ये सवाल है उस्ताद का,
1: उठा रखा है
2: आपने उर्दू अदब का बेड़ा, फिर शायरी में अपनी इंग्लिश को क्यों घसेड़ा, फिर शायरी में अपनी इंग्लिश को क्यों घसेड़ा। अब शागिर्द भी आगे से बच्चे हैं, वो भी आगे से वो किसी से कम नहीं है,
1: वो
2: जवाब देता है,
1: वो जवाब देता है, बीट कर लेते हैं
2: जी। अब शागिर्द का जरा जवाब सुनिए,
1: क्या
2: बिना यूज किए इंग्लिश का वर्ड शेर कहने से कासिर हूँ, बिना यूज किए इंग्लिश का वर्ड शेर कहने से कासिर हूँ, क्या करूँ मजबूर हूँ अकबर से मुतासिर हूँ। ये अकबर जो है हमारे बहुत
1: अकबर अलाहाबादी
2: से जी। तो अब आजकल वाकई हमारी जो है आम स्पोकन लैंग्वेज में इंग्लिश का जो है ना वो बहुत इसमें अमल दखल है, इसमें
1: जरूर
2: इस्तेमाल करते हैं,
1: कभी कभी हम भी डाल लेते हैं, क्योंकि जब वो सोचते हैं कि वो उर्दू का कौन सा लफ्ज इसमें इस्तेमाल करें तो ऑटोमेटिकली जो है ना इधर से लफ्ज बीच में आ जाता है
2: जी जी।
1: चेहरे तो बहुत मिल जाएंगे, इकबाल साहब का ये है, चेहरे तो बहुत मिल जाएंगे हमसे भी खूबसूरत, जब दिल की बात आएगी तो हार जाओगे तुम
2: जी। आपने इकबाल का जिक्र किया
1: जी जी,
2: तो इकबाल ही का ये है कि मेरे बचपन के दिन भी क्या खूब थे इकबाल,
1: वाह
2: मेरे बचपन के दिन भी क्या खूब थे इकबाल, बेनमाजी भी था और बेगुनाह भी।
1: बचपन यस
2: ये है ना बचपन, आपका बचपन वाकई बेहतरीन जमाना होता है आपकी लाइफ का, ना दुख ना गम ना कोई फिक्र ना परेशानी जी बिल्कुल।
1: सिर्फ यहाँ के बच्चे आजकल कहते हैं कि मैं स्ट्रेस ही हो गई है, ये ना स्कूल में जब एग्जाम होते हैं तब वैसे बेफिक्र, यही चीज होती है कि बचपन से जब थोड़ा सा बंदा बड़ा होता है तो फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में थोड़ी यानी कि परेशानी हो जाती है बंदे की
2: जी।
1: तो उसके बाद कहते हैं कि भाई तुमने ये डिग्री कर ली है अब
2: बस उसके बाद फिर
1: शादी वगैरह कर लो जी,
2: नहीं वो उसके उसको भी मसला खत्म नहीं होता, फिर तो आपका सिलसिला स्टार्ट होता है आपका जी जी। तो अब क्या है लता मंगेशकर की आवाज में सुना जाए कुछ या
1: नहीं? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सुनाऊं आज किशोर कुमार साहब को, यहाँ पर मुसोद शाह साहब हुआ करते थे, वो इस नगमे को बेहद पसंद किया करते थे, ए मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए।
2: आजकल यही हाल हालात हैं हर जगह जी, सब लोग चैन ढूंढते हैं सुकून ढूंढते हैं, लेकिन वो कहाँ मिलेगा ये आप ही को पता है जी।

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusi sun rahe ho Link FM.
2: Lazier Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114-308-2727 or visit us online, laziersolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0333-00571009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have

0: इसलिए पूछ रहा है कि किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, कि बता देना उनको।
1: जी बताएं आप, अब क्या नाम है आपका।
0: अच्छा तो ठीक, एक सेकंड मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पर हमारा नाम गया है, कौन
2: सुहाना सफर विद इफ्फत हमीद एंड मोहम्मद यासीन।
0: एक बार फिर,
2: यू आर लिसनिंग टू सुहाना सफर विद इफ्फत हमीद एंड मोहम्मद यासीन।
0: ठीक है जी,
1: जी
0: तो पता चल गया लोगों को। अब आ रहा है, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा।
3: मैं चलने के लिए तैयार हूँ।
1: समय साथ निभाते रहिएगा जी, टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। जी जी
0: आ गया।

0: अब तो से पुकारूं।
1: जी
0: क्या नाम है तुम्हारा? मलकाए तरन्नुम नूर जहाँ की आवाज में ये खूबसूरत नगमा आप सुन रहे थे।
1: गरनाता इसमें यानी के ये जो है ना तब्बू और उसके डैडी ने इसमें काम किया था
0: जी। तो अब जो हमारे पास मैसेजेस हैं वो भी मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। जी हाँ, आपने लिखा है शाहिदा की थैंक यू सो मच फॉर लता नाइस सॉन्ग। आप हमने जो पहले लता मंगेशकर के नगमे सुनाए, आई रियली लाइक इट एंड आई होप यू हैव अ गुड सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। जी हाँ शाहिदा, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे नगमे हैं लेकिन कभी कभी स्टूडियोज में उस वक्त नहीं होते जब आप फरमाइश करते हैं, लेकिन यस अच्छे नगमे हमारे पास यकीनन है। आपको जो मैंने अभी लतीफ़ा बताया टीचर एंड स्टूडेंट का, आपको हाँ। बहुत ही वो पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम को पसंद करने का शायदा। तो अब आपने जो है ना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा सुनना चाहा है तो
1: वही जो है ना मांगा था ना,
0: मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत। जी
1: मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत, ये विश्वजीत की सारा बानू फिल्म थी। तो ऐसा है कि जी इसमें जो विश्वजीत है ना और सारा बानू की आवाज़ भी आपको सुनने को मिलेगी, तो जरूर इसको सुनिएगा।
2: आज मेरे जिंदगी का सबसे मुबारक दिन है, मैंने तुम्हें फिर से पा लिया है। चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, जहाँ तुम्हारा दिल ले जाए, जहाँ मेरा कातिल ले जाए।

आज मेरा जन्मदिन है, सभी होंगे लेकिन तुम ना होगे अशोक। मैं जानती हूँ इसमें ना मेरा कसूर है ना तुम्हारा, लेकिन लेकिन न जाने क्यों आज वो दिन बार बार याद आ रहा है जब मैं तुमसे बहुत नाराज हो गई थी और तुम मुझे मना रहे थे।

0: कहीं मुझे प्यार ना हो जाए। वो कहते हैं ना, जो प्यार और इश्क की जब बात आती है, कहते हैं मर्ज़े इश्क जिसे हो उसे क्या याद रहे, मर्ज़े इश्क जिसे हो उसे क्या याद रहे, ना दवा याद रहे और ना दुआ याद रहे। खूबसूरत नगमा था मेरी मोहब्बत, पाक मोहब्बत जी। शाहिदा जी, आपने इसको सुनना चाहा था, उम्मीद है कि आप यकीनन खुश हुई होंगी अपनी ये फरमाइश सुनकर, और बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपके टेक्स्ट मैसेजेस भेजने का। यही नगमा किसी और को भी पसंद है, जरा उनकी आवाज़ में सुने और फिर पता चलेगा कि ये कौन है। जी जरा
1: सुनाइए,
0: जरा
1: पता चल जाएगा।
2: मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए तो बच बच के चलना हजूर, कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए।
0: वाह वाह,
2: पूरब पश्चिम ऊपर।

0: जैसे राम रहीमा, मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत।
1: वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब जी, जबरदस्त आवाज। समय ये आवाज भी
2: इनके एल्बम में कितने हिट हुए होंगे?
1: मेरा ख्याल है ये खुद ही हिट है। एल्बम की क्या बात कर रहे हैं, ये खुद हिट है ये जी। सामिन ये आवाज जो है, मेरा ख्याल है ये किसी तारफ की मोहताज नहीं। शेफील्ड क्या गिरदोनवाह में भी जो है ये बहुत जानी पहचानी जो है आवाज है, और ये हैं हमारे अपने चौधरी करामत साहब जी। अस्सलाम वालेकुम
2: जी। बोलो सलाम
3: जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपके सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज
1: जी। करामत साहब, मौसम कैसा लगा?
3: मौसम ब्यूटीफुल है जी, हम तो तरसते रहते हैं कि थोड़ी सी धूप निकले और हमें भी कोई मजा आए। सर्दी में तो बस यहाँ
1: यही है, वही वाली बात है कि ऐसे मौसम को भी हम तरसते हैं,
2: दो निकल जाए
1: जी।
2: जी
1: जी बिल्कुल ठीक है जी। करामत साहब, आप जब आते हैं तो यकीनन कोई अच्छी खबर लेकर आते हैं
3: जी। बिल्कुल, हमेशा की तरह अपनी कम्युनिटी के लिए खिदमत जो कर रहे हैं हम।
1: बिल्कुल जी जी।
3: तो इसी हवाले से एक बहुत बड़ा म्यूजिक शो करवा रहे हैं शेफील्ड में
1: जी।
3: हमारे पाकिस्तान के फोक सिंगर जो कि जिला हजारा से इनका तलक है, नाइम मजारवी, फोक सिंगर के यानी कि टॉप क्लास इस वक्त जो अताउल्ला हानी साहब हेलवी के बाद मेरे ख्याल में यही है, बल्कि अताउल्ला हानी साहब हेलवी ने खुद भी मुझे बोला था कि मेरे बाद ये नाइम मजारवी होंगे सिंगर, फोक सिंगर के बड़े सिंगर बनेंगे जिनके बहुत मशहूर गाने। चलो कोई गल नहीं, नहीं बनिया साडा कोई गल नहीं, ये अखियां ने या छुरियां ने ये कत्ल करण तो चुनिया ने।
1: बहुत खूब,
2: वाह क्या कहना।
1: अच्छा जी, तो कब हो रहा है ये शो
3: जी? ये ट्यूसडे को जो आने वाले दो दिन रहते हैं
1: जी।
3: लास्ट ट्यूसडे को 14 जुलाई, और ये शेफील्ड में अरूज,
1: अरूज
3: बेडिंग के नाम से जानते हैं अरूज
1: जी, ठीक
3: तो
1: है।
3: वहाँ पर ये हो रहा है शेफील्ड में अटिक्लिफ रोड पे, और एक फैमिली शो है, काफ़ी लोग बाहर से भी आ रहे हैं फैमिलीज वाले, और शेफील्ड के लोग हमेशा मेरा साथ देते हैं
1: जी,
3: और उम्मीद है कि इस बार भी इससे भी ज्यादा साथ देंगे
1: इनके, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। इनके साथ और कौन कौन आ रहा है?
3: जिनके साथ हमारी पाकिस्तान की मशहूर सिंगर हैं
1: जी
3: फराह खान।
1: अच्छा।
3: जो कि नूर जान के गाने जो बिल्कुल बहुत अच्छा गाती हैं उनको, और उसके साथ एक और सिंगर हैं मुस्कान। मुस्कान जो है ना वो पाकिस्तान की मिस पाकिस्तान थी 1960 में, उसके बाद वो मॉडलिंग करती हैं और उसमें सिंगिंग भी करती हैं, वो भी आ रही हैं।
1: अच्छा।
3: और हमारे पाकिस्तान की एक मशहूर अदाकारा फिल्म एक्ट्रेस ज़ारा अकबर भी इसमें आ रही है।
1: अच्छा ठीक है,
2: वे तुम काफ़ी मशहूर हैं
1: जी,
2: ज़ारा अकबर आएंगी।
1: ज़ारा अकबर बिल्कुल। अच्छा जी, तो टिकट्स के हवाले से ज़रा बताइए।
3: जी, इसके टिकट्स स्टैंडर्ड टिकट्स हमेशा की तरह 25 पाउंड है, और उसके बाद जो VIP वो 55।
1: अच्छा।
3: जो मीट एंड ग्रीट जो मिलना चाहें उनसे फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं वो है 75 पाउंड, और स्टैंडर्ड टिकट जो है वो 25 पाउंड है।
1: ठीक है
3: जी
1: जी, जी। और कहाँ से ये मिल सकते हैं अगर वो इन एडवांस कुछ लेना चाहें, या डोर पर भी अवेलेबल?
3: अभी तो डोर पे मिल जाएंगे क्योंकि थोड़ा टाइम कम हो गया है
1: जी।
3: अपना ऑनलाइन मिल सकते हैं टिकट उनको इवेंट ब्राइट पे।
1: अच्छा।
3: ऑनलाइन जाएं अगर तो इवेंट ब्राइट से वो टिकट आपको मिल
1: अच्छा,
3: सकते
1: अच्छा इवेंट ब्राइट से आप जो है सामने आप टिकट ले सकते हैं। ये शो कितने बजे शुरू हो रहा है?
3: ये हम 7:30 बजे शुरू करते हैं, और इंशाल्लाह फिर पूरा शो होगा जब पहले दो हमारे जो सिंगर है मुस्कान, लोकल नहीं है प्रोफेशनल सिंगर है वो।
2: अच्छा अच्छा, लोकल भी
3: पाकिस्तान से
2: इंट्रोड्यूस किया करते थे, उनका क्या हुआ
3: इस बार? इनको ये पाकिस्तान के जो ये दोनों सिंगर हैं फीमेल, ये पाकिस्तान से आ रही हैं, और इसलिए पहले एक मुस्कान का होगा एंट्री,
2: ठीक है,
3: उसकी परफॉर्मेंस के बाद फिर फराह खान जो नूरजान को बहुत अच्छा गाती है उसकी होगी।
1: अच्छा जी।
3: और फिर लास्ट पे जो हमेशा की तरह जो हमारे मेन सिंगर होते हैं नाइम मजारवी,
2: वन एंड ओनली
3: द लेजेंड
1: जी। अच्छा जी, तो सामिन चौधरी करामत साहब हमारे स्टूडियोज में आज मौजूद हैं, हमेशा की तरह जो है ये शो लेके आते हैं शेफील्ड में, और इनकी बहुत सालों से इनकी यही काविश है कि जितने भी पाकिस्तान के माया नाज जो फनकार हैं उनके शोज जो है ना वो शेफील्ड में कराने का क्रेडिट जो है ये चौधरी करामत साहब को ही है। बड़े अरसे से जो है ये आपकी खिदमत में ये ऐसे ऐसे फनकार यहाँ पर और ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स लेके आते हैं, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: जैसे मैंने कि शेफील्ड में जैसे आपने कहा अभी, तो मैंने पाकिस्तान के जो क्रिकेट मैचेस हैं वो भी शेफील्ड में करवाए, जैसे इनको पता है
1: बिल्कुल जी।
3: पाकिस्तान वर्सेस वर्ल्ड 11 जो कि हमारे प्रोफेशनल क्रिकेट थे सारे, शाहिद अफरीदी से लेकर अब्दुर्रज़ाक हफीज, यानी कि दो बार हमने किया शेफील्ड में करवाया जो मैंने
1: जी। तो जी हां, समय ट्यूसडे 14th जुलाई जी हैं 14 जुलाई को, जो कि ट्यूसडे, कल अब मंडे है, ट्यूसडे जो है ना, एक दिन के बाद ही परसों, यानी कि नईम हज़ारवी का ये शो लेकर आ रहे हैं चौधरी करामत साहब शेफील्ड अरूज स्वीट्स में। तो शाम को 7:30 बजे मेरे ख्याल में इनका ये शो शुरू होगा, डोर ओपन 7 बजे डोर ओपन हो जाएंगे। तो आप तशरीफ लाइए,
3: फैमिली लेकर आए, एंजॉय करेंगे
1: जी। तो प्रमोट कीजिए अपने पाकिस्तानी फनकारों को, चौधरी करामत साहब को, जो इतनी एफर्ट करते हैं आपके लिए इन फनकारों को यहाँ पर लाने की। तो जरा बताइए कि हम शेफील्ड के लोग हैं, जिंदा दिलाने
2: जी हैं, बिल्कुल हैं। और जाते जाते चौधरी साहब कोई शेर फेंक दें माइक में ताकि लोग सुन लें।
3: शेर फेंक दें माइक में
1: जी जी, मतलब है कि ये अपने इनकी अपनी लैंग्वेज है ना जी, फेंके जी जी। तो जरा नाइस अच्छा सा शेर जरा इरशाद हो जाए जी।
3: आज तुहानू पंजाबी सुनांदे हां
1: जी जी, इरशाद।
3: असी नाजुक दिल दे लोग हैं यार, असि नाजिक दिल दे लोग हैं यार, साडा दिल ना यूं दिखाया कर, ना झूठे वादे करिया कर, ना झूठी कसमा खाया कर। तैनू किन्नी वारी आख्या मैनू वल वल ना जवाया कर, तेरी याद दे विच मैं मर जासा मैनू इन्ना याद ना आया।
2: हां वाह वाह बहुत खूब। अच्छा जाते जाते एक और ठीक है कि दिलीप कुमार साहब को हम उनका ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं चंद रंगों में ब्लैंक, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? दिलीप कुमार साहब,
3: दिलीप कुमार यूसुफ खान जो के पेशावर के रहने वाले थे
1: जी,
3: और फैमिली पठान फैमिली से बिलोंग करते थे
1: जी जी।
3: मेरे ख्याल में सुपरस्टार जितने भी जो इंडिया में हैं इनसे बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन का भी ये उनका मैंने सुना इंटरव्यू कि दिलीप कुमार के साथ फिल्म शुरुआत होती है और ख़त्म भी दिलीप कुमार के साथ होती है। इतने बड़े फनकार थे, उनकी अपना एक स्टाइल था
1: जी।
3: अभी शाहरुख खान भी उनकी कॉपी करता है, बहुत लोगों ने कॉपी की है, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार। मनोज कुमार तो कहता मैंने
2: बिल्कुल लिखा था,
3: राजेंद्र कुमार भी है जी। तो इतने बड़े फनकार थे दिलीप कुमार,
1: बिल्कुल जी।
2: तो सुना दे दिलीप कुमार की फिल्म का एक नगमा है
1: जी, जरूर देखिए।
2: शायद आपने फिल्म देखी होगी, क्या नाम था, न्याद और रेंज, न्याद और देखी थी अजीत के साथ,
3: जब जब जुल्फे थी कुमारी को दिल में थोड़ा।

0: अभी छेड़ेंगे गली के लड़के, लेकिन लड़कों को आना नहीं चाहिए गली में, आपने घर में रहना चाहिए आराम से बैठे हुए, ताकि गली में आएंगे तो लड़के लड़कियों को छेड़ेंगे और क्या करेंगे, और काम होता है उनका।
1: अच्छा वही है ना, बस आ गई तो तोहमत तो लगा देते हो बेकारी की हम पर, तोहमत तो लगा देते हो बेकारी की हम पर,
0: हम पर
1: पूछो तो सही किस लिए बेकार हुए हैं। खूब जी हाँ, दिल धड़कता है तो डर सा लगता है, दिल धड़कता है तो डर सा लगा रहता है, कोई सुन ना ले मेरी धड़कनों में नाम तेरा।
0: ओ वाह वाह वाह, क्या कहना, कोई सुन ना ले मेरी धड़कनों में नाम तेरा। ए जनाब याकूब साहब ने अर्लियन फोन किया था आपके लिए, मैं जो नगमा था तलत महमूद का वो मैंने लाइन अप कर लिया है, एड्स के बाद आपका वो नगमा मैं सुनाऊंगा।
1: और अभी जो हमें
0: आबिद मुगल साहब,
1: आबिद मुगल साहब आपके भी कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया
0: हैं ये।
1: जी हाँ यकीनन
0: जी, प्रोग्राम के हैं
1: जी बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं आबिद साहब, प्रोग्राम को सुनने का पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। समय अगर आप भी हमें कोई मैसेज भेजना चाहते हैं 07939849339 पर आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं।
0: आप ऐसा करते हैं नगमा सुना देते हैं
1: जी,
0: गालबन मक्का तरम नूर जहां की आवाज़ में हो सकता है वैसे, ठीक है प्ले करें
1: जी, करें जी जी, जी।

0: मेरी जिंदगी तराना, मेरी जिंदगी है नगमा। मलका ए तरन्नुम नूर जहाँ की आवाज़ में सामिन ये खूबसूरत नगमा आपके लिए पेश कर रहे थे। प्रोग्राम जो है ये जो पेश किया जा रहा है लिंक एफएम से और सुहाना सफ़र प्रोग्राम से आप ये नगमा सुन रहे थे इफ़त हमीद और मोहम्मद यासीन के साथ। सामिन बात करते हैं कुछ और अच्छी बातें। किसी ने माँ से सवाल किया
1: जी
0: कि अगर आपके कदमों से जन्नत ले ली जाए और आपसे कहा जाए कि कुछ और मांग लो तो आप खुदा से क्या मांगेंगे?
1: क्या मांगेंगे?
0: तो माँ ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी औलाद का नसीब अपने हाथ से लिखने का हक मांगूंगी क्योंकि उनकी खुशी के आगे मेरे लिए हर जन्नत छोटी है। बहुत खूब।
1: मैं क्यों दामन को फैलाऊं, मैं क्यों दामन को फैलाऊं, मैं क्यों कोई दुआ मांगूं

0: कि आप
1: मन के सच्चे होते हैं ना,
0: बिल्कुल जो है ना आपको बिल्कुल जो है ना वो स्पीचलेस कर देते हैं वो
1: कभी-कभी।
0: बेटा जो है ना अपने बाप से कहता है, अब्बू आपके बाल सफेद क्यों हो रहे हैं? बच्चों के छोटे छोटे मासूम सवालात, अब्बू आपके बाल सफेद क्यों हो रहे हैं? तो बाप ने कहा कि बेटा तुम्हारी शरारत की वजह से।
1: अच्छा।
0: बेटा कहता है कि वो कैसे? तो बाप ने कहा जब कोई बेटा शरारत करता है तो उसके बाप के सर का एक बाल सफेद हो जाता है। अब अच्छा, बच्चा आगे क्या कहता है?
1: क्या?
0: बच्चा बड़ी भोली सी सूरत बनाकर, अच्छा अब मैं समझा कि दादा जान के सारे बाल सफेद क्यों है।
1: आपकी वजह से।
0: बच्चे तो फिर बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे। जी बिल्कुल। तो ये है कुछ। जी हाँ, अब
1: कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें कुदरत ने बनाया होगा,

0: दिल करता है हर वक्त तेरे सदके उतारूं, दिल करता है हर वक्त तेरे सदके उतारूं, भला इस कदर भी हसीन होता है महबूब किसी का। ये थे अजय देवगन, कुमार सानू गा रहे थे अजय देवगन साहब के लिए, और रवीना टंडन थी उनकी महबूबा। अच्छा, मोहसिन साहब ने एक वॉइस मैसेज भेजा है
1: जी,
0: जिसके लिए वो हम उसको सुन नहीं पा रहे हैं जी। हाँ, तो शुक्रिया मोहसिन साहब, आप फिर याद करते हैं, आपने कॉल भी की है और जो आपने फरमाइश किया वो मैंने नोट कर ली है, तो फिर मिलने पर आप ज़रूर सुनिएगा, प्रोग्राम सुनते रहिए आप, आपकी मोहब्बतों का
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपका, ऑलवेज आप प्रोग्राम सुनते हैं, आप मैसेज भी हमें भेजते हैं। कहते हैं कि औरत मर्द औरत को कब बुरे लगते हैं, यहाँ से निकलेगा जी है कि मर्द औरत को कब बुरे लगते हैं, जरा आप सुनिए, आप जरा उनकी लिस्ट सुने। जब सारा दिन घर में रहे मर्द, जब सारा दिन घर में रहे, जब सारा दिन घर से बाहर रहे, जब सारा दिन सोता रहे
0: जी,
1: बहुत देर तक मोबाइल पर रहे,
0: बिल्कुल
1: खूब सजे संवरे और बन ठन कर जब वो बाहर निकले, कंगी ना करे मैला कुचाला रहे, घर में बहुत कम बोले, बहुत ज्यादा बोले, औरतों को घूरे, घर में लड़ाई झगड़ा करे, सुलह सफाई करने वाला, औरत की बात ना मानने वाला, और आहिस्ता आहिस्ता चुस्की लेता हुआ और चाय पीता हुआ, सब्जी ना काट के देने वाला, आलू सही से ना छीलने वाला
0: जी जी।
1: बच्चों को होमवर्क ना कराने वाला, सास के आने पर खुश ना होने वाला, बिस्किट खाकर रैपर टेबल पर छोड़ने वाला, अपनी तनख्वाह पूरी ना बताने वाला, हर हफ्ते नया सूट ना लेकर देने वाला, बिस्तर ठीक से ना सेट करने वाला, और चम्मच को किताब पर रखने वाला, शॉपिंग के लिए हर वीकेंड पर ना ले जाने वाला, बगैर स्त्री के कपड़े पहनने वाला, और कहते हैं कि चंद हालतों के सिवा औरत को मर्द बहुत अच्छे लगते हैं। ये चंद बातें,
0: चंद एक आपने 100 तो बातें गिन ली है, पता नहीं वो कौन सी बातें जब उनको अच्छे लगते हैं, वो शायद चंद बातें हों।
1: चले जी, तूने और रंगीले कैसा जादू किया, ठीक है, ये बात भी अपनी जगह ठीक है जी। ये मैं नहीं, ये लता मंगेशकर कह रही है, फिल्म का नाम है गालिबन कुदरत, फिल्म से ये नगमा है, हेमा मालिनी और राजेश खन्ना की फिल्म जी। सामी आप सबके नाम

0: क्या ये जादू भी करते हैं पिया वाले हैं या? किसी मोहब्बत हो तो फिर जादू करने की क्या जरूरत है?
1: जी हाँ,
0: उससे पहले जादू लोग करवाते हैं ना।
1: बिल्कुल, मोहब्बत में इंसान खुद ब खुद जो है वो घिर जाता है, किसी और जादू की जरूरत नहीं पड़ती। जी बिल्कुल। समय अब कुछ हेल्थ के हवाले से हाँ, बात करते हैं कि
0: जो डायबिटीज होती है उसके लिए कुछ हाँ, फल या फ्रूट।
1: जी हाँ, एक डॉक्टर रोहित हैं। जी हाँ, ये मुंबई के जो है ना बहुत मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और उनका ये कहना है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं जिनको शुगर की जो है ना वो प्रॉब्लम है, उनके लिए जो बेहतरीन फल हैं, उन्होंने उनका बताया कि जो बेहतरीन फल हैं वो उनको लेने चाहिए। उन्होंने सेब जो है एप्पल उनको 10 में से 10 नंबर दिए।
0: अच्छा,
1: कि ये फल जो है ना ये बहुत अच्छा है डायबिटिक लोगों के लिए, क्योंकि इसमें फाइबर जो है ये बहुत अच्छी मिकदार में होता है, और इससे एकदम से आपकी शुगर का जो लेवल है बॉडी में वो नहीं बढ़ता। इसके अलावा उन्होंने जो अमरूद है, ठीक है, अमरूद को गुआवा जो है उनको भी 10 में से 10 नंबर उन्होंने दिए हैं, क्योंकि इसमें भी फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं। अब जो पपाया है जिसको हम पपीता कहते हैं, उसमें से उन्होंने 10 में से 9 नंबर दिए। ये भी पपीता भी आपके खाना जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। नाशपाती जो है, ठीक है, नाशपाती फेयर जो है उसको भी उन्होंने 10 में से 9 नंबर दिए हैं। ये भी इसमें भी बहुत जो है ना ये फाइबर्स इसमें होते हैं, वो आपको खाना चाहिए। और जो है जैसे हम खाते हैं ऑरेंजेस जो हैं, इन्होंने 10 में से 8 नंबर दिए हैं। इनमें हाँ कि अच्छा है, इनमें विटामिन सी होता है, लेकिन उनका कहना है कि इस फलों का अगर आपको डायबिटिक है तो जूस ना पिए बल्कि पूरा ये फल खाएं,
0: पूरा
1: ये फल खाएं तो ये आपके लिए अच्छा। जो आम है, आम को उन्होंने 6 दिए आउट ऑफ 10।
0: अच्छा।
1: उन्होंने कहा कि ये नहीं है कि आप डायबिटिक है तो आप नहीं खा सकते। आप आम जो है ये आप खा सकते हैं, लेकिन इसका साइज छोटा होना चाहिए, मिकदार इसकी थोड़ी। केला जो है उन्होंने 7 मार्क्स दिए हैं। इसको खाने से जो है ना ये पोटेशियम इसमें होता है और फाइबर आपको अच्छा खासा मिल जाता है आप में। और लेकिन बहुत ज्यादा पका हुआ केला नहीं खाना चाहिए, याद रखिएगा सामने कि बहुत पका हुआ केला जो कहते हैं ना चित्री वाला केला है, वो वाला केला आप ना खाएं अगर आप डायबिटिक हैं।
0: जी
1: तो ये
0: ज्यादा शुगर हो जाती है।
1: जी बिल्कुल।
0: पपीता के आपने जिक्र किया, हमने खुद अभी हाल ही मेरे दौरे पर हमने खुद अपना दरख्त लगाया हुआ है और वहाँ से काफ़ी मज़ेदार पपीते निकले और खाए।
1: अच्छा,
0: उसका जो जायका है ना ये सिमिलर टू आम है उसका,
1: यू नो
0: उसके बिल्कुल आम नहीं है लेकिन उसका पता चलता है कि जायका उसका ऐसा है। इस पर मुझे याद आया कि आज का मौसम जो है ना, ये आइसक्रीम का भी मौसम है ना, मेरी आँखों की रौनक और दिल का करार हैं आप समय, मेरी आँखों की रौनक और दिल का करार हैं मेरी ठंडी आइसक्रीम और आम का अचार है।
1: अच्छा बहुत खूब जी।
0: अच्छा, अब याकूब साहब का नगमा
1: जी,
0: तेरी आंख के आंसू पी जाऊं ऐसी मेरी तकदीर कहां, ये तलत महमूद की आवाज है। फिल्म का नाम था जहां आरा, माला सिन्हा और प्रदीप कुमार की थी ये फिल्म। समय और याकूब साहब स्पेशली आपके लिए।

0: तेरी आंख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहां। इंसान जब अंदर से टूट जाता है तो बाहर से खामोश हो जाता है। बुरा भी वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट जाता है। तलत महमूद की आवाज़ में शहनशाह गज़ल थे ये, और समय आपके लिए सुनाया हमने ये लगन।
1: काफ़ी जी जी, हमारे पास मैसेजेस हैं, और सबसे पहले जो है ये रुखसाना इस्माइल रोहद्रम से आपका मैसेज आया। रुखसाना जी, आपके मैसेज का बहुत बहुत शुक्रिया। लिखती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, गुड टू हैव यू बैक। जी असल में मैंने जैसे कि हमने पहले ही कहा था रुखसाना के कुछ तो काम की मसरूफियत की वजह से मैं प्रोग्राम नहीं कर पाई, और मिस्ड योर वॉइस, बहुत शुक्रिया आपका, ज़रा नवाजी। लिख रही हैं कि आई एम कुकिंग एंड लिसनिंग योर प्रोग्राम। ये भी अच्छा है कि हमारी जो लेडीज़ हैं साथ साथ कुकिंग करती हैं और साथ साथ से हमारा प्रोग्राम सुनती हैं, हमारा साथ निभाती हैं। और लिखते हैं आई रियली एन्जॉइंग योर शो। बहुत शुक्रिया रुखसाना जी, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह आपको खुश रखे, प्रोग्राम में हमारा इसी तरह आप साथ निभाते रहिएगा। इसके अलावा जुनेद जी, आपने भी मैसेज भेजा है। जुनेद, आपके भी प्रोग्राम को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। लिखते हैं कि यू शुड डू कॉल इंस्टेड लाइक द गुड ओल्ड डेज में हम जो है ना वो कॉल्स किया करते थे शायद गालिबन उस तरह, तो कोशिश करेंगे। जी हाँ जुनेद, अभी बस अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो बस आगे आगे देखिए होता है क्या। और उसके बाद एक और हमारे पास मैसेज है, मेरे ख्याल में शबरेज का मैसेज है गालिबन, और आप भी प्रोग्राम
0: शबरेज खान।
1: हाँ जी, तो आपका भी प्रोग्राम को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, साथ आप हमारा निभाते रहिएगा। और जी आप सबके लिए ढेरों दुआएं हैं हमारी। जी यासीन,
0: अब दिलीप कुमार की एक फिल्म थी संघर्ष, उसमें
1: संघर्ष जी
0: उसमें एक नगमा था, जब दिल से दिल टकराता है जाने क्या हो जाता है, रुकती है नजर झुकती है जुबान, ना झुकती है नजर रुकती है जुबान, माथे पे पसीना आ जाता है। मोहम्मद रफी की आवाज़।

0: सब दिल से दिल
1: टकराता है, मत पूछिए क्या हो जाता है। फासले बिला वजह नहीं होते, रवैयों की दीवार होती है दरमियां।
2: जी हाँ बिल्कुल।
1: कभी कभी सकून के लिए दवा की नहीं, कभी कभी सकून के लिए दवा की नहीं, किसी की गुफ्तगू की जरूरत होती है। ये बहुत काम की बात है। जी
2: अच्छे,
1: हाँ।
2: अच्छे अल्फाज हूँ, खूबसूरत अल्फाज हूँ। इफ़त जी,
1: जी
2: लाइट आ गई है हमारी इसकी एड्स की। एक मिनट आपके पास
1: चलें, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद वो भी है कि कहते हैं कि टूटी फूटी एक कश्ती और खुश्क समंदर देखा था।
2: हाँ।
1: टूटी फूटी एक कश्ती और खुश्क समंदर देखा था। कल शब मैंने झांक के शायद अपने अंदर देखा था।
2: हाँ, वाह वाह, क्या कहना
1: जी। क्यों करते हो इतनी खामोश मोहब्बत हमसे, क्यों करते हो इतनी खामोश मोहब्बत हमसे, लोग कहते हैं इस बेचारे का कोई नहीं।
2: जी इजाजत चाहेंगे समय से अभी।
1: जी सामिन, इजाजत दीजिए आपका साथ निभाने का, प्रोग्राम को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ढेर सारा प्यार, बहुत सी दुआएं, अल्लाह हाफिज।
2: अल्लाह निगरान सबका।
3: In your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
4: सुनिए सुनिए सुनिए, पार्ल बेकर्स ने शेफील्ड में धूम मचा दी, यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सजा दी। गुलाब जामुन, लड्डू, रसमलाई, फलूदा, हलवा, पूरी,
5: समोसा, चाट, नमक पारे, जलेबी, गाजर हलवा, हर किस्म की केक और मिठाई जो सबको पसंद आई।
4: लजीज चिकन पेस्ट्री, लैम पेस्ट्री, सैंडविच, चिकन पनीनी, दही बल्ले और किबाब, सब कुछ ही लाजवाब। पार्ल बेकर्स, 640 Stanyford Road, शेफील्ड, S94LP, टेलीफोन 0114296092। पार्ल बेकर्स।
6: Getting married or know someone who is? Make your big day unforgettable with Diamond Wedding Services. From breathtaking floral decor to elegant stages, centerpieces and stunning walkways, we design every detail to perfection. However you imagine your dream wedding, our team can bring it to life. So relax, celebrate and let Diamond Wedding Services handle the magic. Call 077-680-47693 and follow us on Instagram and TikTok at Diamond Wedding Services. Your dream, beautifully designed.
7: Listening to Link FM.
8: Sheffield's very own community radio station.
9: Link FM.
10: Hi, my name is Safa.
11: And my name is Zainab.
12: You are listening to Link FM 96.7 FM.
13: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

0: Listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई है और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राब्ता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें NHS.UK/childhoodvaccinations।

0: 07955198814 and 07955198824.
1: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है, ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
2: And the winner is
3: Your Business Being Heard on the Radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
5: Sheffield's very own community radio station.
6: Link FM.
7: My name is Shireen.
8: My name is Abdul Rahman.
9: My name is Saeed Mudassir.
10: This is Rahul.
11: My name is Rizwan Ishraq.
12: My name is Ashan.
13: My name is Azan Mudassir.
14: This is Ariba and you are listening to Link FM.
5: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
6: Link FM.
15: Name Hazarvi UK Tour 2020 Folk Music. Name Hazarvi will be live on stage on Tuesday, 14th of July 2026 at Arud Suites, Sheffield S47WZ, alongside Farah Khan and Zara Akbar. For further details, please contact your Ikramat on 07754132576, and you can also book online at Eventbrite. Tickets start from £25. See you all at the Name Hazarvi show.
1: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

0: are listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, Azir solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bellhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Azir solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00571-009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups

0: difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: तू सब क्यों परेशान खलते हुए जी?
2: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
1: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं, ऐ साढ़े पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ये एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने, भावे कार वे या वैन, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत, लाजवाब सर्विस।
2: ए एमओटी वाले हैं किधर?
1: ए ए

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
1: मैं और रणदीप चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
4: मेरा नाम शफाक हुसैन क्यानी है।
5: मेरा नाम अहमद अस्कर है।
6: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूं।
7: मेरा नाम अंजुम अफसाद है।
8: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising is ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: You are listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, nazeersolicitors.co.uk. Nazeer Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0333-00-57-1009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या द क्लेम टीम डॉट यूके पर तलाश करें
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have